りかな。いへらまへらまへらまい。まつはパンダバイオルケバエバネデキウタパキパラマッマ。サテジバシャパサリラジェウニレ。サテジバシャパサリヤダバハルジョビプラカシラパレ。サラチエバエプラハサティラマデケザサイクリシナレ。दिखवाने मनमा कुलाचिए भयो जानु पर्यो लाउ भनी सुरहारण होई भविष्यनु पनी भयो दाजै बलराम पनी नारायण नारायण।

0: विश्वास श्रेष्ठ मोबाइल नंबर 9860 5988 पलांचोक बेकारी साध्यो बाटे चौकी पछाड़ी भीमेश्वर कोल्ड स्टोर संगे
1: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज

0: बीमा को लाभ दिए आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आजै बनौ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स खुलेर जिउँ
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

नमस्कार रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम बैंडी में थपलो साथ में गया इस बाट हो मुपति प्रसाद साहब कोट आज विक्रम संवत 2083 साल अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सन 2026 जून 8 तारीख ज्येष्ठ 25 गते सोमवार अष्टमी तिथि अब स्तुति करूं

मिका पना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहर नारी ले प्रगति पथ को।

प्रभु जी को दिल खुश गराए तसाई। हे राम रावण लाई मारी सधै सीताजी लाई यहाँ।

0: थियो पापको क्या डर मान्छ तोर बलले जसले बुहारी लियो सारै दुखी भएर सुगुरी बजीले बिन्ती गरेको सुनी सुरीको अब दुख हर्दछु भने अन्तैकरणले गुनी।
1: मेरो नाम सूर्यबहादुर थापा, भिनपा तीन तारथलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजम्बनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल दश जोदायको फलचारी बुद्धि हिँड दोन जानकी सुनि पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार ओम जय हनुमान ज्ञान गुणसागर जय कपिश तिम्लो उजागर रामदूत अजुल्त बलधामा अञ्जनी पुत्र पवन सुतनाम महावीर विक्रम बजरङ्गी कुमति निवार्य स्मृति सङ्गी कञ्चन वर्ण विरास वेश कानन कुण्डल कुञ्चित केशा हात बर्जा ध्वज विराजै काँधे मुजे जन साजै शङ्कर सुवन केशर नन्दन तेज प्रताप महाजगबन्धन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर पर्व चरित्र सुनबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूपधरी से दिखवाया विकट रूप बदल लंगा दरवाया भीम रूपधरी असुर संहारी रामचंद्र के का समारी लाए सजीवन लखन जी आये श्री रघुवीर हरशिवर लाए रघुपती किनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतम भाई सहज बदन तुम्हारा जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा नारद सारद सहित ऐसा एम कुबेर दीपाल जहाते कवि गोविंद कैसे के कहते तुम उपकार सुग्री भई किना राम मिलाए राजपद दिना तुम्हारो मंत्र भी विषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताई मधु फल जानु प्रभु मुन्द्रिका मेली मुखमाई जल्दी लागी गए अतर्जन आई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुबारे तुम रखबारे होतन आज्ञा बिन पैसारे सब सुखलाई तुम्हारी शरणा तुम रक्षे काम को डरना आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग हागते कापे भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हर सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कमर वचन ध्यान जलावे सब पर राम तब श्री राजा तिनके काज सकल तुम्हें साजा अवरो मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगद जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नमनिधि के दाता असवर दिन जान की माता राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रो रघुपति के दासा तुम्हारी भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त खाई और देवता चिदन धरई हनुमत से ही सर्व सु करई संकट कटई मिट सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बलबीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छुटी बंदी माँ सुख हो जो ये पड़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सनाहरी चेरा किजनाथ हृदय महडेरा ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसवंत रूप शिवर रामचंद्र शंकर जी बजा जय हनुमान जय बजरंग बली।